0: कसना पाए साद आप गवाए सेवा करे ता किस पाए मान नानक जिसनो लगा तिस मिले लगा सो प्रवान महला दूजा
1: जो जी होए सो गुए मुहका कया वाओ बीजे बेख मंगे अमृत वेखो एने आओ महला दूजा।

एक ओंकार सतनाम कर्ता पुरख निरपा निर्वैर अकाल मूर्त अजूनी सैभं गुरु प्रसाद चक्र चिहन अर वर्ण जात अर पात नहन जह रूप रंग अर रेख भेख को कह न सकत कहे अचल मूर्त अनुभव प्रकाश समतोज कह जय कोट इंद्र इंद्राण साहे सहाण गणिज त्रिपावन महीप सुर नर असुर नेत नेत बन तृण कहत त्व सर्व नाम कथय कवन कर्म नाम वर्णत सुमत जब लो नहीं भाग लिलार उदय तब लो भ्रमते फिरते बहुतायो कल कोर समुद्र में बूढ़त थे कब हो मिट है नहीं रे पछतायो ताति विचार यह मथुरा जग तारण को अवतार बनायो जपियो जिन अर्जुन देव गुरु फिर संकट जोन गर्भ ना आयो गुरसिख पल के उठ कर अमृत वेले सरना बंदा गुर कै बचन उचार कै धर्मशाला दी सुरत करंदा साध संगत विच जाए कै गुरबाणी दे प्रीत सुनंदा संका मनहो मिटाए कै गुरसिखां दी सेव करंदा किरत विरत कर धर्म दी लै प्रसाद आण बरतंदा गुरसिखां नूं दे कर पिछों बचिया आप खवंदा कली काल प्रगास कर गुर चेला चेला गुरसंदा गुरमुख गाड़ी रहा चलंदा रामदास सरोवर नाते सब उतरे पाप कमाते सोए सनंदड़ी मेरा तन मन मौला नाम जपंदड़ी लाली पंद जलंदड़ी मेरा अंदर ठंडा गुरदर्शन देख निहाली सो कहो टल गुर सेवी है एहनस सहज

जिन हर त्याया सब किस तिसका, तिसके भूख गवाई। ऐसा धन दिया सुख दाता, निखुट ना कब ही जाए। आनंद भया सुख सहज समाने, सतगुर मेल मिलाई। मन नाम जप नाम आराध, आन दिन नाम बखाणी। उपदेश सुन साध संतन का, सब चूकी कान जमाणी। जिन का कृपाल हुआ प्रभ मेरा, से लागे गुर की बाणी। कीमत कौन करे प्रभ तेरी, तू सर्ब जिया दयाला। सब किश कीता तेरा वरत, क्या हम बाल गोपाला। राख ले हो नानक जन तुमरा, ज्यों पिता पूत किरपाला। कीमत कौन करे प्रभ तेरी, तू सर्ब जिया दयाला। सब किश कीता तेरा वरत, क्या हम बाप। सब किश कीता तेरा वरत,

पौड़ी बड़ी बड़ा पार तेरा मर्तबा रंग प्रांगने एक ना जापन करतबा जिया अंदर जियो सब कुछ जान ला सब कुछ तेरे वास तेरा घर पला तेरे घर नंद।

पवन गुरु पाणी पिता माता धरत महत दिवस रात दोए दाई दाया खेले सगल जगत चंगे आया बुरे।

पौड़ी वडी वडा पार तेरा मर्तबा रंग परंग ने करा जापन करतबा जी अंदर जियो सब की जान ला सब की तेरे वास तेरा कर पला तेरा कर आनंद वधाई तुद कारी मान महता ते जय अपना आप जारे सर्व कला भरपूर।

0: बोरी बड़ी हूँ वडाया पार तेरा मर्तुबा रंग परंग नेक ना जापन कर तुबा जी अंदर जी है सब कुछ जान ला सब कुछ तेरे बस तेरा कर पला तेरे कर नंद बधाई तुद कर मान माता ते जपनाया पुजर सर्व कला भरपूर जिसे जत कता नानक दासन दास तुद आगे बिन बता
1: श्लोक पवन गुरु पाणी पिता माता धरत महत दिवस रात दोए दाई दाया खेला सगल जगत चंगियाईया बुरियाईया वाचा धर्म हदूर करमी आपो अपनी के नेड़ाए के दूर जिनी नाम ध्याया गए मसकत का नानक

अपार तेरा मर्तबा, रंग परंग नेक न जापन करतबा। जिया अंदर जियो सब किछ जान ला, सबक तेरे वास तेरा घर भला। तेरा घर आनंद वधाई तुद कर, माण माता तेज अपना आप जार। सर्व कला भरपूर दिस जत कहता, नानक दासन दा तुद आग।

गए मसकत काले नानक ते मुख उजले केती छुट्टी ना। वाहे गुरु जी का खालसा, वाहे गुरु जी की फतेह।

कहीं पे और गली पे कैसे शतर धारी बड़ो अभिमान पुंज दंड को करत है दारा से गली से दुर्योधन से मान तारी भोग भोग अंत भूम में मिलत अंत भूम में मिलत।

संकेत वेद पुराण के ते सिमरत समूण के होए बिताए हैं मोण दी मदार के ते असनी कमार के ते अंश अवतार के ते काल बस भए है पीरी अपने कामर के ते गाने ना परत।

0: तेरा मर्तबा रंग परंग नेकन जापन करतबा जिया अंदर जियो सब किश जान ला सब किश तेरे बस तेरा कर भला
1: तेरे घर आनंद वधाई तुद घर मान महता तेज अपना आप जल सर्ब कला भरपूर दिसे जत कथा नानक दसन दास तुद आगे।

0: नानक ते मुख उजले केती छुटी ना जिनी नाम ते आए आ गए मसकत काल नानक ते मुख उजले केती छुटी नाल वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह।
1: Thank you.

शरण परे की राखहो शर्मा। एक ओंकार श्री वाहेगुरु जी की फतेह। पातशाही दसवीं कवियो वाच बेनती चौपाई। हमरी करो हाथा रक्षा, पूर्ण होए चित की इच्छा। तब चरण मन रहा हमारा, अपना जान करो प्रतिपारा। हमरे दुष्ट स्वै तुम काहो, आप हाथ द मोहे बचाओ। सुखी बसा मोरो परवारा, सेवक सिख सब करतारा। मोर अच्छा निज कर द करिया, सब बैन को आसंगरिया। पूर्ण होए हमारी आसा, तोर भजन की रह प्यासा। तुम्हें छाड़ कोई अवर ना त्याऊं, जो बर चाहूं सो तुम ते पाऊं। सेवक सिख हमारे तारी है, चुन चुन सत्र हमारे मारी है। आप हाथ है मुझे अवरी है, मरण काल का त्रासन वरी है। पूजो सदा हमारे पच्छा, श्री अस्तोज जो करियो रक्षा। राख ले हो मोहे राखन हारे, साहेब संत सहाय प्यारे। दीन बंद दुष्टन के हंता, तुम हो पुरी चतुर्दश कंता। काल पाए ब्रह्मा बाप तरा, काल पाए शिवजू अवतरा। काल पाए कर विष्णु प्रकाशा, सकल काल का किया तमाशा। जवन काल जोगी सब कियो, वेद राज ब्रह्मा जू थियो। जवन काल सब लोक सवारा, नमस्कार है ताहे हमारा। जवन काल सब जगत बनायो, देव दैत जक्षन उपजायो। आद अंत कै अवतारा, सोई गुरु समझियो हमारा। नमस्कार तिसी को हमारी, सकल प्रजा जन आप सवारी। शिव कन को शिव गुण सुख दियो, सतरन को पल मोबद कियो। घट घट के अंतर की जानत, भले बुरे की पीर पछाणत। चीटी ते कुंचर अस्थूला, सब पर कृपा दृष्ट कर फूला। संतन दुख पाए ते दुखी, सुख पाए साधन के सुखी। एक एक की पीर पछाणै, घट घट के पट पट की जानै। जब उद करख करा कर तारा, प्रजा धरत तब देह अपारा। जब या करख करत हो कब हूँ, तुम मैं मिलता देह तर सब हूँ। जीते वदन सृष्ट सब तारै, आप अपनी बूझ उचारै। तुम सब ही ते रहत निरालम, जानत वेद भेद अरालम। निरंकार निर्विकार निर्लंब, आद अनिल अनाद असंभ। ताका मूढ़ चारत भेदा, जाको भेव न पावत भेदा। ताको कर पाहन अनुमानत, महामूढ़ कछ भेद न जानत। महादेव को कहत सदा शिव, निरंकार का चीनत नह पिव। आप अपनी बुद्ध है जेती, वर्णत भिन्न भिन्न तो तेती। तुमरा लखा ना जाए पसारा, केहे विद सजा प्रथम संसारा। एक रूप अनूप स्वरूपा, रंग भयो राव कही पूपा। अंडज जेरज सेत जकीनी, उत्पुज खान बहुर रच दीनी। कहूँ फूल राजा बैठा, कहूँ सिमट भयो शंकर कैठा। सागरी सृष्ट दिखाए अचंपव, आद जुगाद स्वरूप सुजंपव। अब रक्षा मेरी तुम करो, सिख उबार असिख संगरो। दुष्ट जिते उठवा तुत पाता, सकल मलेश करो रणकाता।
जे अस्तु तव सरणी परे तिनके दुष्ट दुखित हवै मरे। पुरख जवन पग परे तिहारे तिनके तुम संकट सब टारे। जो कल को एक बार त्यै है ताके काल निकट न है। रक्षा होए तहें सब काला दुष्ट रिष्ट टरें तत्काला। कृपा दृष्ट तन जाहिन हर हो ताके ताप तनक में हर हो। रिद सिद्ध कर्मो सब होई दुष्ट शाह छ सकै ना कोई। एक बार जिन तुम्हें संभारा काल फास्ते ताहे उवारा। जिन नर नाम तिहारो कहा दारद दुष्ट दुख ते रहा।

दुष्ट दोख ते ले हो बचाई। सवैया पाएंगे जब ते तुमरे तब ते को आंख तरे नहीं आने हो। राम रहीम प्राण कुरान अनेक कह मत एक ना माने हो। सिमरत शास्त्र वेद सवै बहु भेद कह हम एक ना जाने हो। श्री असपान।

राम कली महला तीजा आनंद एक ओंकार सतगुर प्रसाद आनंद भया मेरी माए सतगुरु मैं पाया सतगुर तां पाया सहज सेती मन वजियां बाधाइयां राग रतन परवार परियां शब्द गावण आईयां शब्दो तां गावो हरी केरा मन जनी वसाया कह नानक आनंद होआ सतगुरु मैं पाया। ए मन मेरिया तू सदा रहो हर नाले हर नाल हो तू मन मेरे दुख सावे सारना अंगीकार ओह करे तेरा कर सब सवारना सबना गल्लां समरथ स्वामी सो क्यों मन हो विसारे कह नानक मन मेरे सदा रहो हर नाले साचे साहेबा क्या नहीं करते रह करता तेरा सब किश है जिस देह सो पावे सदा सिफत सलाह तेरी नाम मन वसावे नाम जिनका मन वसिया बाजे शब्द कनेरे कह नानक सच्चे साहेब क्या नहीं करते रह साचा नाम मेरा आधारो साच नाम आधार मेरा जिन भुखा सब गवाईया कर शांत सुख मन आए वसिया जिन इच्छा सब पूजाईया सदा कुरबान कीता गुरु विट हो जिस दी आए वड़ियाईया कह नानक सुनो संत हो शब्द धरो प्यारो साचा नाम मेरा आधारो वाजे पंच शब्द तित कर सुभागै कर सुभागै शब्द वाजे कला जित कर धारिया पंच दूत तुद वस कीते काल कंटक मारिया तुर करम पाया तुद जन कौ से नाम हर कै लागे कह नानक तह सुख होआ तित कर अनहद वाजे।

हरे वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। बोलो जी वाहिगुरु। एक ओंकार वाहिगुरु जी की फतेह। श्री भगवती जी सहाय वार। श्री भगवती जी की पातशाही दसवीं। प्रथम भगवती सिमर कै गुरु नानक लई त्याए। फिर अंगद गुरते अमरदास। राम दस हुई सहाय अर्जन हर गोविंद न। सिमरो श्री हर राय। श्री हर कृष्ण ते आईऐ जिस डिठे सब दुख जाए। तेग बहादुर सिमरै घर नौ निधि आवै ताए। सब थाई होए सहाय दसवें पातशाह। श्री गुरु गोबिंद सिंह साहिब जी। सब थाई होए सहाय दसां पातशाहियां।

अब हम चले ठाकुर पहार, जब हम शरण प्रभु की आई, राख प्रभु पावे मार। लोकन की चतुराई उपमा, ते बैसंतर जार। कोई भला कहो पावे बुरा कहो, हम तन दियो है टार। जो आवत शरण ठाकुर प्रभु तुमरी, तिस राखो कृपा तार। जन नानक शरण तुम्हारी हर जियो, राखो लाज मुरार। जन नानक शरण तुम्हारी हर जियो, राखो लाज मुरार। धन धन रामदास गुर जिन सिरिया, तिन सवारिया। पूरी होई करामात आप सिरजनहार धारिया। सिखी अतै संगति पार ब्रह्म कर नमस्कारिया। अटल अथाह अतोल तू तेरा अंत न पारा वारिया। जिन्नी तू सेव्या पाओ कर, से तुद पार उतारिया। रामदास रोवर नाते, सब उतरे पाप कमाते। सो कहो टल गुर सेवी है, अहनस सहज।

नानक का गुर पूरा भेटिया, सगले दुख विनाशे। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह।

हम अवगुण परे एक गुण नाही, अमृत शाद दिख दिख खाई, माया मो परम पै पूले, सुतदारा स्यों प्रीत लगाई, इक उत्तम पंथ सुनियो गुर संगत, ते मिलंत जम त्रास मिटाई, इक अरदास पाठ कीरत की, गुरु रामदास राख शरणाई, इक अरदास पाठ कीरत की, गुरु रामदास राख शरणाई, सुख टल गुर सेविया, अहनिस सहज सुपाय, दर्शन परसै गुरु कै, जन्म मरण दुख जाए, होवे सिफत खसमदी, नूर अरसों कुरसों चटिया, तुद डिठे सच्चे पातशाह, मल जन्म जन्म दी कटी है, सज्जन सच्चा पातशाह, सिरशाह जिस पास बैठिया सो ही है, सबना दावे साहो, सज्जन सच्चा पातशाह, सिरशाह दशाहो, जिस पास

किलबिक काटे निमख आराध्या, गुरमुख पार उतारा, खोजत खोजत खोज बिचार्यो, राम नाम तत्सारा, किलबिख काटे निमख आराध्या, गुरमुख पार उतारा, हर रस पीवह पुरख ज्ञानी, सुन

कुदरत सारी है, कर आसन डिठो चाओ। दाता करता आप तुम तुस दे वह करे पसाओ। तू जानो ही सब सह दे लै सह जिंद कवाओ। कर आसन डिठो चाओ, कर आसन डिठो।

जाई है जियो पिन सब तिसदा देखा जय आंख गवाई है जे लोड़ है चंगा अपना कर पुन हो नीच सदाई है जे दरवाना पर हर जरवेस करें दी आई है को रहना परिया पाई है को रहना परिया पाई है।

दीपालुआ मंडला खंडावर भंडा अंड जज उत्पजा खानी सेत जा सुमित जाने नानका सरा मेरा जनता नानक जन तो पाए के संभाले सुना जिन करता करना किया चिंता पे करनीता सो करता चिंता करे जिन पाया जग तिस जो

पड़पड़ गड्डी लदी है पड़पड़ भरे है साथ पड़पड़ बेड़ी पाय पड़पड़ गड्डी खात पड़ी है जेते भर।

हर कूड़ मंडप कूड़ माड़ी कूड़ बैसनहार कूड़ काया कूड़ कपड़ कूड़ रूप अपार कूड़ सोयना कूड़ रूपा कूड़ पहननहार कूड़ काया कूड़ कपड़ कूड़ रूप अपार।

0: सेव गवाई है, सेव गवाई है।
1: औड़ी दान मिंडा तली खाक जे मिले ता मस्तक लाई है। कूड़ा लालच छड़िया हुए एक मन अलग ते आई है। फलती वे हो पाई है जे वे ही कार कमाई है। जे हो वे पूर्व लिखा ता धूड़ जिना दी पाई है। मत थोड़ी सेव गवाई है, मत थोड़ी सेव गवाई।

0: सो कर रहा महला दूजा
1: योग शब्द ज्ञान शब्द वेद शब्द ब्राह्मण है खत्री शब्द सूर शब्द शूद्र शब्द प्राकृत है सर्व शब्द में एक

साध न मारिया, जिहा कल करना तिवे होना पचारिया, ऐसी कलना खेडिया जिधर कह गया हारिया, पढ़िया अत्यमिया विचारिया गह विचारिया, मह चले सोगे मारिया, मह चले सोगे मारिया।

वाहे गुरु जी का खालसा, वाहे गुरु जी की फतेह। किया खेल बड मेल तमाशा,

0: संतत ही सत संगत संग सो रंग रते जस गावत है त्रम पंथ धरयो धरनी तराप रह लिव धारन तावत है मथुरा पन भाग भले उनके मन इच्छित ही फल पावत है राव के सुत को तिन त्रास कहा जो चरण गुरु चित लावत है तारयो संसार माया मद मोहित अमृत नाम दियो समरथ फुन कीरत वंत सरा सुख संपत रेदर सिद न छोड़े साथ दान बड़ा अतवंत महाबल सेवक दास कह हो तथ ताहे कहाँ परवाह कहूँ कि जाके बसीस तरयो गुर हाथ तू सतगुरु चहु जुगी आप आपे परमेश्वर सुर नर साधक सिद्ध सिख सेवंत तुरे तुर आद जुगाद अनाद कला धारी त्रिहलो अगम निगम उदरण जरा जमे अरवा गुर अमरदास तेरे थप्पयो परगामी तारण तरण अग अंतक बदे न सल कव गुर रामदास तेरी शरण अग अंतक बदे न सल कव गुर रामदास तेरी शरण।
1: जप तप सत संतोख पिख

दर्शन गुरु सगल सुख सागर, हम अवगुण पर एक गुण नाही, अमृत छाड़ बिखै बिख खाई, माया मोह परम पै फूल, सुत दारा सेउ प्रीत लग। एक उत्तम पंथ सुनयो गुर संगत, तेहे मिलंत जम त्रास मिटाई। एक

0: बस राखो सरना
1: सुख टल गुर सेविया अहनिस सहज सुपाय दर्शन परसे गुरु का जन्म मरण दुख जाय होवै सिफत खुसमंदी नूर अरसोह कुरसोह चटिया तुद डिठे सच्चे पातशाह मल जन्म जन्म दी कटिया सज्जन सच्चा पातशाह सिरशाह जिस पास बैठिया सोहिया सबना दावेसा सज्जन सच्चा पातशाह सिरशाह जिस पास बैठिया सोहिया

सोरठ महला पंजमा कर पहला तितुके एक ओंकार सतगुर प्रसाद किस हो जाची किस आराधी जा सब को कीता होसी जो जो दिसे वड़ा वडेरा सो सो खाकू रलसी निरपौ निरंकार भव खंडन सब सुख नवनिद देसी किस हो जाची किस आराधी जा सब को कीता होसी जो जो दिसे वड़ा वडेरा सो सो खाकू रलसी निरपौ निरंकार भव खंडन सब सुख नवनिद देसी हर जियो तेरी दाती राजा मानस बपड़ा क्या सालाही क्या तिसका मोहताजा रहा जिन हर त्याया सब किश तिसका तिसकी भूख गवाई ऐसा तन दिया सुख दाता निखुट न कभी जाई आनंद भया सुख सहज समाने सतगुर मेल मिलाई मन नाम जप नाम आरा

0: जे तग हुवै जोर महला पहला।
1: नाय मन्या पत उपजै सालाही सच सूत, दरगे अंदर पाईऐ तग ना टूटस पूत महला पहला।
0: तग ना इंद्री तग ना नारी भलके थुक पवैनित दाड़ी, तग ना पैरी तग ना हाथी तग ना जेबा तग ना आखी, वे तगा आपे वत्ता वट तागे अवरा कत्ते ले पाड़ करे भी आहो, कड़ कागल दसे राहो